फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह, संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 66 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरंग की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम। मंगलवार का दिन है, सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है एक बार फिर से, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। चले अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, एक भजन होगा लता मंगेशकर की आवाज में, जरूर सुनते ही रहना। एक सुंदर सा राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में सुंदर सा राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश होगा, एक सुंदर भजन अनूप जलोटा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आपको हम ले चलते हैं बाबला जी की ओर और एक सुंदर भजन जो बाबला जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा हुई थे। आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं हरिओम शरण जी की ओर।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की ओर, और पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन।

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज मंगलवार की सुबह की प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में।

इसके जरिए अति सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ आज का भजन यात्रा का प्रोग्राम भी खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए भी, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

आज बजकर प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुन वालो, आज मंगलवार का दिन 11 तारीख अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आज की सुबह की प्रोग्राम में गाना जो अब के बार पेश होगा आप सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना। रेडियो SBS के जरिए जो पेश किया जा रहा है और होगा प्रोग्राम में एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। साथ में होगा अलका याग्निक।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आज की इस प्रोग्राम में। सुनने वालों घड़ी की ओर देखा जाए 11 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे में। चले ये गीत बस प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

खासतौर पर गाना पेश की गई शान और शरिया घोषाल की आवाज में। शान और शरिया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेव्स में इसकी जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। कुमार सानू एन अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

0: किया जा रहा है सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन और सभी सुनने वालों को बस गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है।
1: रेडियो SBS इन मिड नेदरलैंड एंड इन साउथ हॉलैंड एंड फेर डार बाउट इन योर ऑटो एंड थाउस ऑफ योर डीएबी प्लस रेडियो।
0: डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आप सभी सुनने वालों को खबर किया है कि आप सभी को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत किया जा रहा है। तो ले चलते हैं यहाँ से पुरानी नगमे की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 7 मिनट पैदित हो चुका है। पुरानी नगमे आप जरूर सुनते ही रहना। तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा।

0: में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: साथिया

ये खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए और रेडियो SBS की जरिए सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

परमेश्वर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है सही रामचंद्र का संगीत पर। गाना को आप सुनते ही रहना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं। दवाई

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस भूपिंदर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सर ये। चलिए प्रोग्राम में अगली बार मोहम्मद रफी एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: कर के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश कर गए। जब याद किसी की आती है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम महाचोर।
1: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

महेश कर की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में, अब की बार हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्म महल की ओर। महल फिल्म का नाम 1949 तक का फिल्म।

महल का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर, और अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम दो रास्ते, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030 262 66 11।

का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना मेहदी हसन और मेहनास प्रोग्राम में होगा। एक पाकिस्तानी मूवी का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम बहन भाई। फिल्म बहन भाई, मेहदी हसन और

इसकी गए तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गए। आशा भोसले एन लता मंगेशकर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं 1962 का फिल्म का गीत की ओर। फिल्म का नाम प्रोफेसर

गाना जो पेश की गए आशा भोसले और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम प्रोफेसर, उसी ये फिल्म का गीत भी आपने सुना, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश।

द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम। रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। एक नॉन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में रफी साहब की आवाज में पेश किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिंदगी और मौत फिल्म का नाम।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, जिंदगी और मौत फिल्म का नाम। सुन वालो, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। लता मंगेशकर

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना पेश होगा। फिल्म का नाम सबसे बड़ा रुपया। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 11:11 वेटेड हो चुका है रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एड फिल्म हीरो अनुराधा पोटवाल और मनहर के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

मनहर उदास की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक और खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है और साथ में अलका जी होगा। आंखों में तुम हो फिल्म का नाम।

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालों, आपको मालूम होना चाहिए कि 6 तारीख सितंबर कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल, कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं आफास लाइव आमस्टरडम शहर के अंदर में। अपना टिकट आप खरीदिए जल्द से जल्द, इसलिए कि इन दिनों टिकट काफ़ी जोर तोर से बिक रहा है और टिकट आप जाकर खरीद सकते हैं i-tickets.com उसी वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द अपना टिकट को आप खरीदिए। हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं, आपने नहीं खरीदा तो जल्द कीजिए और जल्द से जल्द जाकर अपना टिकट को आप खरीदिए। कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना

सानू और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पीस की गई। सुन वालों टेम्स रेव 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद असीस और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए पंकज उदास और लता जी की आवाज में फिल्म घायल का गीत पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश होगा और गाना के बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर और उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।

पोटवल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-265-65-60 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू और

गाना उस प्रोग्राम में पीस की गए अजरों भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पीस की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। तो चलिए अब की बार फिल्म लावारिस की ओर, एक फिल्म जो नई हम तीन

द ग्रेट उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से उदित नारायण।

अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम

Ducha jak Nikaury, Udit Narayan ki Avan Smeye, Janabus Programbi, Piski Gaya, Sabhi, Aure, Sabhi, Sinevalu ki Sevambi. चले अब की बार सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है हिम्मतवार।

इसके जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। कुमार सानू एंड अलका।

नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई हम आपको ले चलेंगे अबकी बार हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है, अनुराधा पोटवाल और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम भी पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अनुराधा पोर्टवल की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार फिल्म का नाम हम तुम्हारे हैं सनम।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई हम तुम्हारे है सनम फिल्म का नाम अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

गाना जो पेश की गई तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश जी की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए फिल्म भरोसा की ओर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए मुकेश और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गाना बस आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है महेंद्र कपूर की आवाज में।

फिल्म का नाम दहलीज, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालो रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, और वो भी मोहम्मद रफी की आवाज में। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

मोहम्मद रफी और खासतौर पर आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है। गाना होगा फिल्म का नाम दो दिल, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज।

सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

पिक्चर हादे रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, इस किस्म तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद दिल लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

आप हमारी जान बन गए सुसमधुर मिथुन, विशाल मिश्रा एंड अजीज कौर. दिस लीजिए क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. यू लस्टर्ट नार एट प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega Gaeja, Ormus Kuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना है. इसके साथ दोस्त सलमा आका एंड बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietom Kelleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Jinni met Sunny komt Roeberoe.

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस सॉन्ग दूर ग्लेन जॉन एंड कम्स आउट द फिल्म वो लम्हे हाउ द फेदर मैट बर्थडे बैश सॉन्ग दूर यो यो हनी सिंह आउट द फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से? ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से। लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: En nu reclame, het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम
2: हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।